तेनू कोई रस्ते विच मिले, कोई तेरा मित्र, कोई यार, कोई संबंधी, तां तू हाथ जोड़ के उन्हूं कहना है नमस्ते। पर कई बारी देखी दे नमस्ते दा मतलब यह होंदा कि अगले नूं नमस्कार करनी, अगले दे सामने न्योना, अगले

प्रहलाद नूं पानी विच डोबण दी कोशिश कीती, अग विच साड़न दी कोशिश कीती, फिर खड़ग हथ विच फड़ ली, प्रहलाद नूं मार

अजामल की ओ बैकुंठे थान अजामल पापी सी वेसवा दे कोल जांदा सी वेसवा दे नाल रहन करके इन्ना ए दुष्ट हो गया कि पिता दा कहना ना मन्या गुरु दा कहना ना मन्या राजी दा कहना ना मन्या अजामल पापी बन गया पिता चल वसिया राजे ने शहर विचो बाहर कढ दिता पर अजामल फिर भी पाप करदा रहा अजामल पापी जग जाने सारा संसार अजामल नू जानदा है कि पापी है सत

नारायण नारायण करना, पुत्र नारायण, नारायण परमेश्वर का नाम भी। अंत वेले जमदूत आए, अजामल जेड़ा सी जमदूता नु देख के ते डर गए, पुत्र भुल गया ते कहन लगा नारायण बचा। नारायण के मनो जमदूत हट गए, देवते आए ता नामदेव जी कहंदे ने ओ अजामल पापी भी बैकुंठ नु चला गया, भावे सारी उम्र पाप कीते पर एक वाली नाम ले

गई, सुख के बस्तर दी थी, सेवा की थी, बेनती की थी मां पुरुषानु के मैं बड़ी पापण, कृपा करो मेरा भी उदार होवे।

कि अहल्या की शादी गौतम ऋषि नाल हो गई है। इंद्र जिहड़ा सी मन विच कुड़दा होया वापस इंद्रपुरी चला गया। गौतम ऋषि का विआह अहल्या नाल होया, ए अपने टिकाने वापस आ गए। जीवन सुखां दा बतीत होण लग पिया, पर इंद्र मन विच कुड़दा रहा ते सोचदा रहा किसे ना किसे तरीके अहल्या नूं मैं प्राप्त करना है। इसे करके गुरु साहिबां ने कहा बाणी विच, है भाई एक अकाल पुरख नूं नमस्ते करो, ओनू मत्था टेको, क्योंकि ओदे विच कोई औगण नहीं।

ओदे आगे मथा टेकन दा की फायदा। ए इंदर पावे देवता खवांदा है पर सोचदा है पराई औरत ए लिया, ओनू मैं प्राप्त कर

इंद्र देवता अपनी सभा लाके बैठे, कुछ सोच रहे है। ता लिखिया है कि इंद्र नू चिंता विच पिया देख के चंद्रमा भी कोल बैठा सी। चंद्रमा कहन लगा।

गौतम दी घर वाली अहल्या नू प्राप्त करन वास्ते, इंद्र दी मदद करन वास्ते चंद्रमा भी तैयार होया। चंद्रमा ने कहा, आ इंद्र तू अहल्या नू अपने वास करना चाहना है, मैं तेरी मदद करांगा। सलाह की थी के गौतम ऋषि रोजाना अमृत वेले उठ के तकरीबन 2 बजे इशनान करन जांदा है गंगा ते, और गौतम ऋषि उदों उठदा है जदों कुक्कड़ बांग देंदा। चंद्रमा कहन लगा, मैं कुक्कड़ बन के 2 बजे तू पहला ही बांग दे दियांगा। गौतम ऋषि नान चला जाए।

प्यारे गुरुदेव सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, अपने इस पावन पवित्र शब्द दे विच पैरो महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं, अंधले क्या पाया जग आए। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आए, पाप के इथे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी उसका पता भी नहीं लगा, उसनु पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गल बात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गल बात दे विच ओ थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

तेरे अपने घर दे विच इतना रंग है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है, इतनी खुमारी है, इतना सुरूर है, इतनी जॉय है। कहंदे हन की ना माने उसनु, तू मान क्यों नहीं लेंदी, थोड़ा जा यत्न क्यों नहीं कर दी कि तू अपने अंदरली जो दुनिया है कि उसनु भी मान के देख। अपने घर हर रंगो, तेरा अपना घर कहंदे हन, बाहरों तेरी जिंदगी जो है वो बड़ी उदास है, बेचैन है, दुखी है, पर तेनू पता नहीं तेरा अपना घर अपना अंदर एक रंगीन

कहते कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम भुलाए। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वह परम दे विच उलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सतगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ए अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आता है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल का इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया है। सुते पे बंदे नूं जो मर्जी आखी जाए उसते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उसते कोई असर नहीं हुंदा, उसमें पता ही नहीं लग गया की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनों कुछ किया जाए तो उसनों भी पता नहीं चल रहा, वो बेहोश है। या कोई इंसान कोमाच होवे तो उसनों भी कोई पता नहीं चल रहा कि क्या गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हैं, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हैं, तो फिर की सानू ये गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं लियाएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, तो जी फिर भी राम ना बैठे रही है। वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सभी गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लिया सुन लिया फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना हुई, जिंदगी उसे तरह की ही रही कि असि अजिहे लोग हां। गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है जा नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु किथे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

गुरु अर्जन देव जी का मैं शब्द सुनाने लगा सी कि उन्होंने पाया है। हुण इस शब्द नूं तुहाडे सामने एक एग्जाम्पल वजो रखण दा मेरा मतलब यह है कि यही स्टेट ऑफ माइंड गुरु अर्जन देव जी चाहते हैं, गुरु नानक देव जी चाहते हैं कि असी अचीव करिए, यही स्टेट ऑफ माइंड। तो ओ सुनो, कहते हैं पाया लाल रतन मन पाया, तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर शब्द समाया। मेरा मन भी शांत ठंडा, तन भी शांत ठंडा। हुण बंदा कहे तन दे शांत का मतलब की है? एयर कंडीशन लगा के तन नूं ठंडा किया है? नहीं, तन दे विच जड़ियां अग्गां बलदियां हन, तन दे विच कई किस्म दियां भुखां दियां अग्गां बल रहियां हन, डिजायर्स दियां अग्गां बल रहियां हन, कहिंदे उह शांत हो गईआं हन। हुण तन सताउंदा नहीं है, तन परेशान नहीं करदा है। ऑल द क्रेविंग्स हैव सीज्ड, तन बिल्कुल आराम च है। तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर शब्द समाया। सतगुरु दे शब्द दे विच मैं कहिंदे समा गया हां, एकमिक हो गया। फिर कहिंदे हन लाथी भूख त्रिशन सब लाथी। वो कैसी स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच लाथी भूख सब भुख लिख गई है, त्रिशन सब लाथी, चिंता सगल विसारी, कोई चिंता नहीं रह गई। वाह, कितनी वंडरफुल स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिथे कोई चिंता नहीं रह गई। चिंता सगल विसारी, कर मस्तक गुर पूरे धरियो, मन जीतो जग सारी। गुर पूरे ने मेरे सिर उत्ते हथ रखिया है ते मैं अपने मन नूं जित लिया है। मन नूं जितन दे नाल कहिंदे सारा जगत ही जितया जांदा है। मन जीतो जग सारी। तृप्त अघाय रहे रिद अंतर, कहिंदे तृप्त अघाए रहे रिद अंतर, रिद अपने हिरदे दे अंदर रहना हां, डोलन ते अब चुके, कहिंदे हुण डोलना खत्म हो गया है। अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नाही रे मूके, कहिंदे ओ खजाना अंदरों मिलिया है जिस दे विच कदे तोट आ ही नहीं सकी। अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नाही रे मूके। ओ अवस्था है, ए अवस्था है जिहड़ी गुरु बाबा जी सानू चाहुंदे हन कि असां अपने ऐस जीवन च पा के जानी सी। ताई ते कहा कि तुसी पाया की है, अंदले क्या पाया जागा, अपने अंदरों ये प्राप्त होनी सी। सो असी अज दे इस कीर्तन दे विच जो कुछ सुनिया है इस उत्ते रिफ्लैक्ट करना है कि सचमुच असी अपने जीवन दे विच अपनी अंदरली दुनिया दे विचों कुछ पा के जा रहे हां, जां हाले तक खाली ही बैठे, जां खाली ही बैठे हैं। और वह है सब कुछ इस काया दे विच ही। तां दास ने काया दे उत्ते कीर्तन शुरू कीते सी, तन दे उत्ते, बॉडी दे उत्ते, कि सानू पता लगे कि गुरु महाराज जी ने साडी बॉडी दे मुतलक, इस काया दे मुतलक, इस देही दे मुतलक की कुछ आख्या है। आप जी नूं मैं तीन नुक्ते सुना चुका हां। नंबर एक, दुर्लभ है एक काया, क्योंकि इस काया दे अंदर ही वो दुर्लभ वस्तु है जो असी पाउणी है। दूसरा, एक काया मंदिर है, अकाल पुरख वाहिगुरु इस दे अंदर निवास करता है। तीसरा, एक काया रब दी पत्नी है। ज्यो ज्यो इसनू अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर लै जाओगे, पत्नी का जीवन घुमला जाएगा, बीमार हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, उदास हो जाएगी। अज एक चौथा नुक्ता आप जी के सामने रखता हां। गुरु महाराज जी आखते हैं कि जो कुछ सारे ब्रह्मंड दे विच है, वो सारे का सारा इस काया के अंदर

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई कोई उसको खोजने की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना रचती है, बनाती है, सवार दी है, शिंगार दी है, प्रतिपाल दी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पावे, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है, वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजया है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवां नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे हन ये जिहड़ी देही है ये घोड़ी है, भाव कि ये वहीकल है, अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचन दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है। इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इसनु चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हां। वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी से पंक्ति कि इस दिया इंद्रियां बलशाली हैं, हुण ओ धोई फिर दिया हैं, ओ खिची फिर दिया हैं सानू। ओ गल हो गई है कि सवार नू हुण घोड़ी खिची फिर दी, धोई फिर दी। ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा। घोड़ी किसे दे पास होवे, उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू ए ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लैके जाना है। वो उसको रोकना चाहे वो रुके ना, तो किसे खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इसनू अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, तो इसनू उस पासे वल जान नू वरतो जिस पासे वल जान नू तुहानू हदायत कीती जांदी है। उस ट्रेजर लैंड नू जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, जिथे खजाना है वो तुहाडे अपने ही अंदर है। कहिंदे हन इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनू पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नू विगड़न ना दिओ कदे, इस दे स्वभाव विगड़न ना दिओ, इस दी आदतां विगड़न ना दिओ, इस दी एनर्जी नू वेस्ट ना करो, इसनू गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि यह तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन। अगला नुकता, गुरु बाबा जी आखदे हन कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूना तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना आज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों, महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। ते हुण मेरी अर्ज है कि यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनू मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं वो सारी संगत नू बुलाना हुंदा, सारी संगत उसनू बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वो पंक्ति याद भी हो जांदी, क्योंकि वो बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी है। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहन तो बाद आप सारे बोले, तो ए पंक्ति आप नू याद हो जाएगी। सब माया मोह
ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਠੱਗੀ ਇਤਆਦ, ਵੈਰ, ਮੇਰ, ਤੇਰ, ਆਪਣਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਮਤਾ, ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੋ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸ ਹਨ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੂਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵ

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू ही मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े ओ मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितने को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम आदमी हां एक दमी दम आ गया ता आदमी नहीं ते मिट्टी दी ढेरी पई है। इतना को ही मनुख दी होंद है के एक गिठ और चार उंगला श्वास मनुख दा बार आउंदा है, पता नहीं भाई मुड़ेगा के ना मुड़ेगा। ए एक अख दे पलक विच पाना वरत सकदा है, इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन भाई इस जल दे बुद बुदे दा कितना कु है जीवन, बस इतना ही है कि मोहलत मोहत ना जाना, पल दे विच पता नहीं की हो जाना। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने शब्द

बहु पर पंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे भूले, कपट ना कीजे अंत नबेरा तेरे जी पहले। जेड़ी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पै लीजे। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नू भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़िया, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ। आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा 1 पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए तन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा तन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई, जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे।

संगीत भुजंग प्रयाग छंद जागर दंग नागर दंग बागर दंग बाजे गागर दंग गाजे महा गाजे गाजे कागर दंग तीरंग कंकड़ाकंग कागर दंग काती कटारी कड़ाकंग गिरना गिरना गिरना।

बड़ी सेवा करता है, पता नहीं कि क्यों आए, बोलना काटा है, सिमरन करता है, पता नहीं कौन है।

आपे दूर हो जाएगी। जब गुरु देव की अरदास करोगे, मन बनाओगे, टेकल की तरपिता आपे कृपा करेगा। क्यों? कि जब गुरु सेवा ने अमृत दिता देती सी, अपनी सुपत्नी माता सेव कौर मुके आसी सेव दीवान, जेड़ा अमृत छकेगा वो मेरा पुत्र होगा, मैं उसका पिता, कि तुसी उसके माता हो। आओ माता सेव कौर की गोद बच बैठ कलगियां वाले पिता का प्यार लेना।

भगत कबीर जी परमात्मा नूं मिलन दा एक बड़ा सुचज्जा ते सुंदर रस्ता दसदे ने। कहंदे ने हे भाई, जे रब नूं मिलना ते हउमै दा त्याग

अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहिन चंदन सुगंध ग्रह सोहिन चंदन सुगंध।

जिन राम कहे, कोई अल्लाह आख लगे, कोई वाहे गुरु आख लगे, कोई राम राम आखी जावे, सब उस प्रभु दे नाम ने। सतगुरां ने बाणी विच उस प्रभु नूं किन्ने नामां नाल पकारिया है। रब एक है, प्रभु परमात्मा एक है, ते ए दुनिया बखरे बखरे नामां नाल पकारदी है। किस भी नाम नाल पकार लवो, बस जेड़ा भी उसका नाम लवेगा उतर जाएगा। देवा पाहिन तारी ले, राम कहत जन कछ ना करे। कोई हो जाए नहीं जिन्हें प्रभु का नाम लिया होवे ते ना करिया होवे। जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शां कर रहे हैं, नाम दी वड्याई कर रहे हैं।

पुत्र ने जन्म लिया है ते पुत्र जन्म तो ही पिंगला है, हाथां ते पैरां तो हीण है। समा बीतिया मां गुजर गई, और समा बीतिया ते इसदा पिता भी गुजर गया। सारे लोग आखन लगे भी ये बच्चा बड़ा ही कर्महीन है, हर कोई नफरत करन लगा। भैण भरा रिश्तेदार सारे बोल कबोल बोल दे, जदों दा तू जन्म लिया है ते घर विच काटा ही काटा है, तुर नहीं सकदा, हथां ना कुछ कर नहीं सकदा, कोई तेनू किन्ना चिर खवावेगा। रोज बोल कबोल बोल दे ने तू बड़ा ही कर्महीन है। अज इस बच्चे को सुनिया ना गया, हर रोज दियां गल्लां सुन के अज तंग आया, आखन लगा मैं तुहाडा दिता नहीं खांदा। वो प्रभु परमात्मा जिहड़ा सारी सृष्टि नूं चलाउंदा है, मैं

जेदे पल्ले नाम है दुनिया दे सुख ओदे मगर मगर टुरे फिरदे ने। सतगुरु बाणी विच आख रहे ने लोक पर लोक दे सुख ओदे मगर टुर पैंदे ने। जेड़ा हिरदे विच नाम बसाउंदा है अज की होया राजा बिरध होया ते ए जवान होया राजे ने इस बच्चे नू राज गद्दी ते बिठा दिता है। जेड़ी दुनिया सारी इस दे नाल नफरत कर दी सी पिंड नगरी वाले भैन भरा जेडे एडे धक्के मारदे सन अज सारे इस नू एक बार मिलन दी खातर दरवाजे ते खलोते तरले कर रहे ने। जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत ओ चौं कुंट माने। एवें बाबा जी ने बाणी विच आख्या नाम विच पाबरियां ही एडियां ने।

ते गनका ने दरवाजा खोलिया, बाबा जी अंदर लांग आओ, अंदर लांग आओ। महापुरुष दरवाजे विच खलोते ने, नस के अंदर गई। सतपुरख आए ने सेवा कर लवा, नस के गई ते दूध का गिलास लेके आई, बाबा जी छक लवो। महापुरुष आखन लगे, बच्ची तेरा काम की है, की किरत कर दी है? बाबा जी मेरा धंधा बहुत माड़ा है, मैं कर्मां दी मारी बेसवा। आखन लगे, बच्ची आ तेरे हथां दा दुध असा ने नहीं पीना, इन्नी गल आखी ते गनका दे अखां विचों हंजू आए। क्यों नहीं पीना, तेरा कर्म माड़ा है, जे साड़ी एक गल मनेगी ते तां ए दुध दा गिलास मैं पीवांगा। महापुरुष

राम बोलेंगी इवी बोलेगा, इनू राम राम सुखाया कर, गल मनेगी। हथ जोड़ के आखन लगी, बाबा जी इस तोते नू मैं राम राम सिखावा। महापुरशां ने दुध सकिया, हुण महापुरशां दे बचन तोते नू हर रोज राम राम सिखाउंदी है, हर रोज किन्ना चिर राम राम करदी है। ते एक दिन इहो जिहां बख्शां होईयां, राम नाम इहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया, तोते दा उधार ते होना ही सी, इहदी रसना ते राम सदा वास्ते वस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी वड्डी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इस लई सदा वास्ते खुल गए। ते ए है प्रभु दे नाम दी महिमा। सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे ने, जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन, नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहेगुरु अल्लाह।

परम सरकार शासन एक पवित्र शब्द धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का उच्चारण किया होया। इस शब्द दे विच साहब जी उपदेश करते हैं जैसे एक आग दे चुल्हे दे विच लकड़ा बालिए अग बालिए लकड़ा नू हिलाइए ता अग दे छोटे छोटे चंगियाड़े उतां नू उड़दे अग ते इक्को ही है पर चंगियाड़े कितने उड़दे जैसे एक आग दे जिस तरह एक आग तो जैसे एक आग दे कनुका कोट कोट कहते ने करोड़।

ऐसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है। नदी ते एको ही है, पानी ते एको ही है, पर पानी दिया लहरा करोड़ा उठ दिया। पानी एको ही है पर लहर जद उठ दिए ते असी कह देने हैं नदी विच पानी दी लहर उठ गई। कह देने हैं लहर उठ दिया पईयां ने, लहर है ते पानी विच है भी पानी, पर एक नाम पै गया पानी दी लहर। पर सत्संगत ओ लहर है ता पानी, पानी तो वख नहीं। आखो सतनाम सिंह जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे। जिस तरह नदी विच पानी दियां लहरां उठदियां ने, उन्हां पानी दियां लहरां नूं असी पानी ही आखांगे। पानी

मोतीराम तू क्यों आए? तेनु पता है हर पासे पैर है, तेरी जान नु खतरा हो सकता है। ते मोतीराम मेरा कहन लगा, माता जी जो उपकार तुसा कीते उन्हां उपकारा बदले एक मोतीराम मेहरा ते की हजारा मोतीराम मेहरे तुहाडे चरणा तो कुर्बान। मैं दुध लेके आया, माता जी नु साहबजादिया नु दुध पियाया, ते माता जी ने फिर वचन कहे, तन मोती जिन पुन कमाया, गुरु लाला ताई दुध पियाया। दुध पिया के मोतीराम मेहरा नाले भुगा मार के रोंदा है, ते नाले कहंदा है, माता जी मैं की करा, मेरे होर वास कुछ नहीं। माता जी ने सिर ते प्यार दिता, ते मोतीराम मेहरा हौले हौले बुरज तो थले उतरे है, और पहरेदारा दे कोल हुंदा होया अपने घर जा पहुंचे है। फिर सोचे है, फिर जावांगा कल दुध लैके, लेकिन कल ना आई, क्योंकि अगले दिन साहबजादे नीह दे विच चिण दिता गया, साहबजादे शहीद हो गए। माता गुजरी जी भी ज्योति ज्योत समा गए, ते हुण पड़ताल हुई, शान बीन शुरू हुई कि किसे ने माता गुजरी और साहबजादिया की मदद की। पड़ताल शुरू हुई ते पहरेदारा तो हौली हौली गल निकलती निकल गई कि मोती राम महरे ने माता गुजरी और साहबजादिया दुध पियाया। नवाब का हुक्म हो गया कि मोती राम महरे नू दरबार विच

निर्धन को पल्ले निर्धन को पल्ले निर्धन को पल्ले निर्धन को पल्ले निर्धन को पल्ले निर्धन को पल्ले हाय हाय निर्धन को पल्ले गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहनी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा दा नाम है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंघदे हां अज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैण पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लंघा दे भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संग जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करने वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लहज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत्संग आज पंजवा निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ए पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवा निर्धन नू पालन दी सेवा लैण

any number. A circle surrounding you. जिसने ए मंग मंग ली है उसदिया सारिया मंगा पूरी और कड़ी मंग नानक को ब्रह्म मया कर सच देवो क्योंकि सच सदा रहने वाली है दूर दिखुटे नानका दूर में हो गया पूरे पदार्थ पहले भी नहीं रहे तो इस वास्ते मामिल पूर्ण दिखुटे नाम का औरंग सच और सिर्फ दी अर्थात पातशाह मैं सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान दुनिया सबका आधे रस्ते चंगे रस्ते पे सच्चे मार्ग पे चलने वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले भगवान परमात्मा ने सच्चे मार्ग चल देना उस तत्व करे सच जरा सच पिया बोलता वह दुध पिया जरा झूठ पिया बोलता वह जहर पिया सच बोलने जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोलने जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराई वो नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा वह नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है वह नाम भी अंब और सानू के अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा लगा फिर वो राखी करनी पैदी संभाल करनी पैर सामू जोड़ा अंग फल है वह प्राप्त इसे तरीके उस वाहगुरु की प्राप्ति का साधन यह वाहगुरु शब्द वाहगुरु गुरु मंत्र है जब हम ये गुरु का मंत्र बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरमंत्र जो वाहिगुरु है ये दरगाह ही टिकट दुनिया भी सफर करना होने ता भी टिकट की जो टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसे तरह उस दरगाह जाने वास्ते मालक तक पहुंचने वास्ते सानू टिकट चाहिए एक दिन वस्ती रस्ती दुनिया में छड़ के पुत्र धियां त्याग के किसी लंबे पेड़े इंसान ने किसी ने पूछा मारा ए धन गुरु अर्जुन देव पातशाह बनाए दसो भाई जिस रस्ते पे एक दिन इंसान भी तुरना है मारा पता दसो कितने वीर उसके को कितने प्रयाग सब बांबे जाना मीलों का पता
ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਭ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ

मारते सुन रहे, गरीब में भी सुन रहे, अमीर में भी सुन रहे, सरदार में भी सुन रहे, राजे महाराजे में भी सुन रहे। तो कौन अपना महाराज अंतर इतने डरते ही रह गए, कारण भी ये थे, मकान भी ये थे, जमीना भी ये थे, पुत्र धियां ने भी साथ नहीं देना, कई वस्तु मेरे नाल जाएगी तो हनुमान।

जै महाभयान तपत पर अगर कहने उस रस्ते ते जिथे बड़ा ओपरा जो रस्ता है उठे और गर्मी भी पड़े आम कहते गर्म इतने गर्मी हो गई असि कई ओपरा देता है और उस गर्मी को बचने वास्ते ना कोई और कोई साध इको साध जय महा ध्यान तपत पौ धाम ते हर के नाम।

पाणी पावक तने किया पंकज मोह पग्नि जल हम देखा तैं डूबी अले मन एक न चेर समूढ माना हर विसरत तेरे गुंगलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पढ़या मूर्ख मुग्धा जन्म भया प्रणवत नानक तिनकी शरणा जंतु नाही विसरया आशा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख द्योरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर का तेरा के तैन काम मेल साध संगत भज केवल नाम स्रंग जाम लाग भव जल तरंग।

संस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो शत्रुन को पलनो बद कियो घट घट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछानत चीटी दे कुंजर सूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जाव उद कर करा करतार प्रजा धरता तब दे अपारा जाव आ कर कर दो कबू तुम्हें मिलत दे तर सबू जेते बदन से सब धार आप अपनी बूझ उचार तुम सभी ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिला अनाद असंभ

तेती तुमरा लखन जाए पसारा एक सजा प्रसन्न संसारा एक रूपा अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही पुप्पा अंडज जेरज सेतज की उत भुज खान बहुर रस दीनी कहूं फूल राजा होए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सदकाय अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वं भव अब रचा मेरी तुम करो सिख उबार आसिक संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता ये अस्त हो जा तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हो मरे पुरख जवन पर परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल नित में ऐ है रचा होए ताए सब काला

तवते को अंतरे में अन्यो राम रहीम पुराण पुराण अनेक है मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र बेसव वो भेद कहे हम एक न जान्यो श्री स्पान के बात उम्र ही कर

जेठ दा महीना तत्ता तुप तत्ती रेत तत्ती मुगल सरकार तत्ती पर ठंडे कौन हन शांति दे पुंज निमरता दे सागर गंभीरता दे सोमे गुरबाणी दे बोहित गुरमत दे स्कॉलर पंजवे गुरु नानक शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। किसे कवि ने ठीक ही किया है, इना अखा ने कई पतंगियां नू उंज ता लाटा ते सड़दियां देखिया है, मैं कई वेर चुप किते गुंचियां नू देगा विच भी कढ़दियां देखिया है, तत्ती रेत ते कई नमाजियां नू मैं कलमा यारदा पढ़दियां देखिया है, पर मैं की दसा अर्जन देव ताई किदा अग उते सड़दियां देखिया है। हजरत मियां मीर ईरान दे रहण वाला जो उस वक्त लाहौर विच ही रह रिया सी, जदों उस नू किसे ने जाके दसिया ओए फकरा जाके अपने यार दी हालत ता देख, ता इस सुन के साईं मियां मीर दौड़िया आया आके की देखदा है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठे हुए हन, सारा शरीर छले छले होया पिया है, पर मस्तक डलका मारिया है ते मुखों की कह रहे हन, तेरा किया मीठा लागे। ए सब कुछ देख के साईं मियां मीर ने गुरु साहिब नू सवाल कीता। मियां मीर ने पुछिया सतगुरां नू, तवी तपदी वांग तंदूर दाता ओ तन भर दिता सारा शालिया ने जिवें वेल ते गुच्छे अंगूर दाता, कोमल कलियां तो कूला रेशमा तो जिसम ढलके होया मनूर दाता, ओ कल तख्त उत्ते ते अज तवी उत्ते एक ही खेल रचाए रब्बी नूर दाता, ते नाल ही हाथ जोड़ के बेनती कीती, महाराज मेरे कोलों ए तसीहे जरे नहीं जांदे, मेनू हुक्म दियो मैं अज ही लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट खड़का देंगा। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ी धीरता नाल पुछया, साईं जी ए शक्तियां कित्थों प्राप्त कीतियां? तां जवाब मिलिया, जी हजूर कोलों। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, इन्हां शक्तियां नूं असीं वी तां वरत सकदे सी, पर शक्ति वरतना परमात्मा दे विरुद्ध बगावत करना है। साढ़े दो निशाने सन, असी इस सृष्टि उपर दो नीहां रखनिया सन। अगों हस के सतगुरु कहन लगे, तू फकरा रमज पछाणी नहीं, मैं तेरे दिल दी जान लई, तू मेरे दिल दी जानी नहीं, मैं रखनिया है सन दो नीहां, एक शहीदी दी एक हरमंदर दी, ओ तू रखती ए मैं रखूं, ए चाह है मेरे अंदर दी।